हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लॉन्ड हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हैं, हम आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।